0: दोस्तों, हम सभी एक मुसाफिर की तरह ही यहाँ पर हैं। बस अपने अच्छे कर्म करते रहिए और चलते रहिए।
1: मुसाफिर
0: किशोर कुमार की आवाज़ में परिचय फिल्म से सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म राम तेरी गंगा मैली से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, सब कुछ उस प्रभु के हाथ में है। अगर वो बनाना चाहता है तो बनाएगा, और अगर बिगाड़ना चाहता है तो बिगाड़ेगा। हम तो केवल कठपुतली मात्र हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

दोस्तों, भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

0: నిలయంలో సమయం 6 గంటలు. న్యూస్ హెడ్లైన్స్ వింటారు.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మై మనోజ్. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे. बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे. बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी. खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी. राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी. श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है. यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी. श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया. इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया. गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन

0: सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5,000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. More from our correspondent.
2: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda, focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ऑल राइट सर, हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, हैदराबाद, नमस्ते, हेलो, आदाब, यानी ये तीन अल्फाज। यू हैव ट्यून टू रेनबो एफएम ऑन 1.9 एंड दिस इज योर मॉर्निंग कंपेनियन रेडियो मैन इज हियर। और नमस्ते हेलो आदाब में हमेशा की तरह जब तक दो बजेंगे हम आपके साथ रहेंगे, साथ ही साथ आपसे चर्चाएं होंगी, बातचीत होगी और हम हमारी प्लेलिस्ट से आपके लिए पसंदीदा गाने प्ले करेंगे। हिंदी अंग्रेजी में यहाँ पर गाने बजते हैं। आई ब्रिंग यू द मेलोडीज दैट वेक अप योर स्पिरिट, स्टोरीज एंड स्पार्क योर डे एंड द रिदम्स दैट मेक एवरी मोमेंट शाइन। सो whether you are at work, at home or on the move. So let's start the morning with the music that connects hearts and the cultures.

0: बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आपने सुना। आई एम श्योर यू लाइक दिस वेरी वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक दैट यू जस्ट लिसन टू। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ द 70s, कंपोज बाय आर डी बर्मन। वो बहुत ही टैलेंटेड थे और संग बाय आशा भोंसले एंड मोहम्मद रफ़ी। द ट्यून ब्लेंड्स द वेस्टर्न गिटार और फिर इंडियन मेलोडी, इतना हसीन टाइमलेस फ्यूजन संगम कह सकते हैं। एंड इट वॉज सो प्लेफुल येट हार्ट फेल्ट लिरिक्स कैप्चर द थ्रिल ऑफ लव एंड इनोसेंस ऑफ स्टोलन मोमेंट्स। द सॉन्ग्स पिक्चराइजेशन विद जीन तमान एंड विजय अरोड़ा एडिट यूथफुल चार्म एंड मेकिंग ए जनरेशनल एंथम ऑफ रोमांस। क्या कहना, मशहूर नगमा जो हर बार ऐसे मशहूर नगमों को कंपोज किया है आर डी बर्मन ने, और हिंदुस्तानी धुन है, जादुई इसके अल्फाज हैं। ज़ीनत अमान और विजय अरोड़ा की बेहतरीन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलती है। एक ऐसा गाना जो चुपके चुपके प्यार के जज्बात को खूबसूरती से बयान करता है। तो आइए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर रहेगा आपकी खिदमत में दूसरे अन्य गाने। स्टे ट्यून एंड स्टे टुगेदर। आपने अपने रेडियो से ट्यून किया है हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब, और मेरा नाम है रेडियो मैन।
1: नेनो एम श्रीनिवास, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, हैदराबाद। पिल्ल परंगा मिस्सिंग चिल्ड्रन्स यानी 0 to 18 ఇయర్స్ ఎటువంటి పిల్లలు మీకు కనపడినట్లయితే మీరు 1098కు కాల్ చేయండి, 24/7 అవైలబుల్ ఉంటుంది పిల్లల పరిరక్షణకై హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్।

ऑलराइट दोस्तों, तो ये था तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती फिल्म कभी कभी का नगमा, खयाम साहब के खूबसूरत अंदाज में सुरों से पिरोया, और साहिर लुधियानवी की शायरी ने इस गीत को अमर बना दिया। किशोर कुमार की मस्ती और लता जी की नज़ाकत दोनों मिलकर इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना देते हैं। तो आइए चलते हैं, जल्दी से सुनते हैं पर्दा है पर्दा फिल्म, बल्कि अमर अकबर एंथोनी से पर्दा है पर्दा वाला नगमा।

ऑलराइट दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब, और मेरा नाम है रेडियो मैन। और हैदराबाद का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो लुक्स लाइक टू बी सनी, लेकिन इब्तिदा में जब दिन की शुरुआत हुई थी तब थोड़ा सा प्लेजेंट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। 32 डिग्री सेल्सियस फ़िलहाल पारा है और शायद 38 तक जा सकता है, और क्योंकि ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है, यू माइट एक्सपेक्टेड टू रीच टू 39 डिग्रीज। और जो मिनिमम टेम्परेचर है रात के समय जब देखने को मिलेगा वो 28 डिग्री सेल्सियस है, विद मोस्टली क्लियर स्काइज एंड ओनली अ स्लाइट चांस ऑफ शावर्स। जैसे कि कल कहीं कहीं बूंदा बांदी हुई थी, वैसे ही कुछ हो सकता है। सो टुडे इट्स मोस्टली सनी, हाई टेम्परेचर नियर 39 एंड लो टेम्परेचर टू बी अराउंड 28 डिग्रीज, चांसेस ऑफ रेन आर अप्रॉक्सीमेटली 20%। तो ये है आज के हमारे मौसम का हाल, लेकिन फ़िलहाल स्टूडियोज़ में मौसम बहुत ही सर्द है, ज़बरदस्त है, और इसी मौसम का मज़ा लेते हैं हम एक नगमे के साथ। एक दूजे के लिए जो फिल्म आई थी इंटर रिलीजन, बल्कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस के ऊपर ये फिल्म बनी थी। प्यार कोई मज़हब, कोई कास्ट, कोई क्रीड नहीं देखता, और उसके गाने काफ़ी मशहूर हुए थे। उन्हीं गानों में से एक गाना आपके लिए।

0: ऑल राइट दोस्तों, इतना खूबसूरत सा नगमा लता मंगेशकर की प्यारी आवाज़ एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन। 1981 में ये फिल्म आई थी, लैंडमार्क रोमांटिक डुएट गाने थे एसपी बालासुब्रमण्यम, फिर लता मंगेशकर की जोड़ी। कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और जिसे बोल्ड में बांधा था आनंद बख्शी ने। द सॉन्ग बिकेम वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ आनंद बख्शीस एंड फॉर विच ही वॉन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट लिरिसिस्ट एंड अर्न एस पी बालासुब्रमण्यम द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर। है ना कमाल की बात, सीमेंटिंग इट्स प्लेस एज वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट सेलिब्रेटेड लव पैलेट्स। एक दूजे के लिए 1981 की फिल्म जिसे डायरेक्ट किया था के बालाचंद्र ने, कमल हासन की बॉलीवुड में एंट्री होती है। दिस वॉज हिज डेब्यू फिल्म ऑपोजिट रति अग्निहोत्री। स्टोरी बहुत ही खास है, सिंपल है। वासु है, एक तमिल लड़का है, सपना है जो कि नॉर्थ इंडिया में रहती है, लेकिन वो आई है चेन्नई और दोनों में प्यार हो जाता है। सेट इन गोवा देयर रोमांस ब्लॉसम्स थ्रू जेस्चर्स एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, बट द सोसाइटल प्रेजुडिस फैमिलियल रेसिस्टेंस लीड टू अ ट्रेजिक कंक्लूजन। यही है इसका अंतिम अंत। फिल्म वॉज अ ब्लॉकबस्टर हमेशा की तरह, अडेप्टेड फ्रॉम बालचंद्रस तेलुगु हिट मरो चरित्र। तेलुगु फिल्म थी और जिसे आपको हिंदी में अडेप्ट किया गया था, एंड ऑल्सो अ कल्चरल टचस्टोन फॉर द इंटर रिलीजन लव स्टोरीज। है ना कमाल की बात। तो ये था तेरे मेरे बीच में, और हमारे बीच में कुछ नहीं है, लेकिन एक ही रिश्ता है आपके और हमारे दरमियान, वो है इस रेडियो का। और रेडियो मैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता है, और ये नगमे के बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में रहेंगे दूसरे अन्य गाने। सो स्टे ट्यून एंड स्टे टुगेदर। यू हैव ट्यून टू दिस वंडरफुल स्टेशन आकाशवाणी हैदराबाद ऑन एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़। द शो नेम इज कॉल्ड नमस्ते हेलो आदाब, और मेरा नाम है रेडियो मैन।
1: మీ సొంత ఇంటి కల సాకారానికి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారి అద్భుత అవకాశం.
2: అతి తక్కువ వడ్డీ రేటు 7.15% గృహ రుణాలను అందిస్తోంది.
1: అంతేకాక మీ యొక్క అత్యవసరాలకై బంగారంపై తక్షణ రుణ సదుపాయం.

भाई वाह, मेरे तो पांव जमीन पर नहीं है, मैं तो आसमान में उड़ रहा हूँ। दिस इज द रोमांटिक जेम फ्रॉम द मूवी घर। घर हाउस, और कंपोज बाय आदि बर्मन। गुलजार ने इसके गीत लिखे और लता मंगेशकर ने खूबसूरत अंदाज में इसे गाया। और ये जो गाना है वो दरअसल इट कैप्चर्स द ब्यूटिफुल यूफोरिया ऑफ लव, फीलिंग ऑफ फ्लोटिंग एंड ओवरवेलम्ड बाय द हैप्पीनेस दैट वन के नॉट कीप देयर फीट ऑन द ग्राउंड। पैरों तले ज़मीन जिस तरह खिसक जाती है, निकल जाती है, आपको लगता है कि आप हवा में हैं। गुलज़ार की शायरी में जो इमेजरी है, आर डी बर्मन में जो जेंटल ऑर्केस्ट्रेशन है, दे क्रिएटेड अ ड्रीमी एटमोसफियर वाइल लताज वॉइस कन्वेज इनोसेंस एंड जॉय। सो इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सप्रेशंस ऑफ यूथफुल रोमांस इन हिंदी सिनेमा, है ना। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते एक खूबसूरत नगमा है, और इसे खूबसूरत तरीके से सजाया था आर डी बर्मन ने, कंपोज किया था, और गुलजार ने लिखा है, लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी, इसे अमर बनाया। इस गाने में मोहब्बत का वो जज्बा है जो इंसान को हवाओं में उड़ा देता है। खुशी इतनी गहरी है कि पांव ज़मीन पर टिकते ही नहीं। गुलजार की शायरी, आर डी बर्मन साहब की धुन, इससे क्या रंग निकल कर आता है ये गाने में आपको दिखेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड वी विल ट्राई एंड लुक इनटू सम मोर सॉन्ग्स। तो चलिए, हमारा जो दूसरा नगमा है हमने लिया है हमारी वेस्टर्न म्यूजिकल ट्रैक्स में से, एंड दैट इज़ अबाउट माइकल बोल्टन ग्रेटेस्ट हिट्स सेड आई लव यू बट आई लाइट। इंटरेस्टिंग टेक।

that's how mutt also got some association. So sometimes the words aren't enough, and but it's about love. So powerful that words fall short, and because of the love being so powerful, and with Bolton's soaring voice, sweeping production, so we have stepped into the world of love without limits. What do you think about it? So, याद है? तो अगला जो हमारा गाना है, बल्कि अगले जो कुछ गाने हैं, वो हिंदी नगमे हैं और आपको पसंद आएंगे. एस पी बालासुब्रमण्यम का दूसरा नगमा हम इस एडिशन नमस्ते हेलो आदाब में प्ले कर रहे हैं. उम्मीद कि आपको पसंद आएगा. मेरा नाम है रेडियो मैन और चलिए सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म से ये गाना.

वाह, आई एम स्पीचलेस. दिस वाज रियली रियली ब्यूटीफुल. मेरे रंग में रंगने वाली, मैंने प्यार किया. 1989 की फिल्म परफेक्ट है. नमस्ते, हेलो, आदाब जैसे शो के लिए राम लक्ष्मण ने इसे धुन में पिरोया और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने इसे गाया. एक बहुत ही आइकॉनिक गाना है. लिरिक्स देव कोहली के हैं. सरेंडर ऑफ लव है इसमें और ढेर सारा जो लव के शेड्स है, प्रेजेंस है और विभिन्न प्रकार के जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है वो भी नज़र आते हैं. एसपीबी की जो सोलफुल वॉइस है, सलमान खान को 4 चांद लगा दिए. डेब्यू फिल्म में टाइमलेस चार्म और सिंबल ऑफ यूथफुल रोमांस दोनों को इतना बेहतरीन तरीके से मिलाया कि एक जेंटल रिदम, फ्लूट, इंटरल्यूड्स, हार्टफेल डिलीवरी और नेशन वाइड फेवरेट. है ना कमाल की बात. सूरज बड़जात्या की ये फिल्म थी और काफ़ी बेहतरीन इसकी स्टोरी रही है. मेरे रंग में रंगने वाली, अ ह्यूज रोल इन द सक्सेस. देखना, एक ऐसा नगमा जो जवानी और मोहब्बत की पहचान बन गया और साथ ही साथ ये गीत हमेशा याद दिलाता है कि प्यार जिंदगी के रंग बदल देता है. तो आपके साथ भी ऐसे कोई रंग बदलते हैं तो हमें बताइए और हम फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद आपके लिए गाने.

अमेजिंग नंबर, बहुत ही दिलचस्प गाना, जाने दो ना। सागर फिल्म से 1985 की ये फिल्म थी, परफेक्ट है हमारे शो के लिए। उसकी वजह यह है कि जावेद अख्तर ने अपने कलम से इसके गीत लिखे, कंपोज किया था आदि बर्मन ने, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने गाना गाया। बहुत ही सेंसुअस प्लेफुल डुएट है, मेकिंग वन

0: द हाइलाइट्स ऑफ द सागर फिल्म के सॉन्ग जो है वो एक टीजिंग इंटीमेसी जो लवर्स के दरमियान होती है उसको दर्शाता है। आशा भोसले की सिल्की आवाज़ है, शैलेंद्र के यूथफुल टोन में एक वीविंग सी बहुत ही ब्यूटीफुल सी ट्यून नज़र आती है। मरमंदा ने ऐसे सॉफ्ट रिदम को ब्लेंड किया जैसे कि जैज़ हो और एक मूड बन जाता है। मिस्चीवियस भी है, मूडी भी है और स्क्रीन पे काफ़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री ऋषि कपूर और डिम्पल कबाड़िया ने इस फिल्म को और भी एक नए तख्त पर लेकर गया है। एक मेमोरेबल ट्रैक है, रमेश सिप्पी की ये फिल्म रही है और कमाल की फिल्म थी। ये नगमा जो 80s के रोमांस की शरारत की एक बेमिसाल आपके सामने पेश करता है, जाने दो ना सागर फिल्म से। और आवाज़ों का जादू है, सुनते हैं ये अमर गीत, लेकिन छू जाता है कि शायद फिर से एक बार सुना जाए, है ना कमाल की बात। तो लीजिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ और गाने।
1: దేశం మొత్తంలో ఒకే ఒక్కడు
2: మన శ్రీ చైతన్య విద్యార్థే

वाह, तू है मेरी किरण, ये इतना पॉपुलर हुआ कि बयान नहीं कर सकते। ये था जादू, बल्कि नज़रों का जादू नहीं, गीत का जादू था। डर से नहीं, मोहब्बत से, एक नगमा जो दिखाता है कि मोहब्बत कभी जादू बन जाती है, कभी दीवानगी। शाहरुख खान के कैरेक्टर की इंटेंसिटी और उदित नारायण की आवाज़ ने इस गीत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। सो 90s का ये नगमा अभी भी गूंज रहा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और 90s से ही लेकर आएंगे एक और नया जेम। स्टे ट्यून।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ऑलराइट साथियों, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक हमारे न्यूज़ इन हिंदी एंड न्यूज़ इन इंग्लिश बारी बारी से हम आपको प्रस्तुत करेंगे एक के बाद एक हमारे न्यू दिल्ली के स्टूडियो से. सो स्टे ट्यून एंड स्टे टुगेदर.

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मानसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

ऑलराइट दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब। 12 बज चुके हैं, 12:11, यहाँ स्टूडियोज़ की घड़ी बता रही है। तो नमस्ते हेलो आदाब, द रिदम कंटिन्यूस बिकॉज द NHA नमस्ते हेलो आदाब रूल्स इन टू इट्स थर्ड आर ऑन FM रेनबो 101.9। सो नाउ अंटिल 1 PM वी विल कीप द मेलोडीज फ्लोइंग, सॉन्ग्स दैट स्टिर मेमोरीज, voices that touch hearts and stories that make your midday brighter. Hope the midday is not going to be scorching, whether you are at lunch or at work or just relaxing. Stay tuned because the music is about to paint your afternoon in every color of love and nostalgia. So chaliye shuruaat karte hain ye khaas gaane se aur hamare saath bane rahiye kyunki ye jo ek 50 minute ya ek ghanta hai वो रंगीन और सुरों से भरा होगा। मैं हूं आपका रेडियो मैन और आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारे खास कार्यक्रम नमस्ते हेलो आदाब।

वाह, आफ्टरनून हैज़ बिकम सो रोमांटिक. नेवर थॉट कि जो बाहर की गर्मी है उसमें इतनी शिद्दत है, लेकिन अंदर की जो गर्मी है हमारे दरमियान वो काफ़ी रोमांटिक है. और इतना खूबसूरत गीत सुनने के बाद मुझे लगता है कि शायद हमें नींद ना आ जाए. प्यार मोहब्बत की बातें यहाँ पर हो रही हैं. नमस्ते, हेलो, आदाब. मैं हूँ आपका रेडियो मैन. जी हाँ, नदीम श्रवण का कंपोजिशन था, रानी मलिक ने बोल लिखे थे, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने मिलकर इस गीत को अमर बना दिया. वन ऑफ द क्राउन ज्वेल्स ऑफ आशिकी, आशिकी फर्स्ट, आशिकी टू भी आई है, लेकिन आशिकी पहली जो थी वो काफ़ी काफ़ी मशहूर हुई और मकबूल हुई. उन एक्टर्स को जो ज़माना नहीं जानता था, अब आज तक भी याद करता है. उसके बाद उन्हें ऐसी मकबूलियत नहीं मिली. द सॉन्ग कैप्चर्स द टेंडर प्ली ऑफ लव, आस्किंग द बिलवड टू एंटर लाइफ स्लोली, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, जेंटली एंड कम्प्लीटली. जी हाँ, तो एक ऐसा साउंड ट्रैक है जहाँ पर आपको लगता है कि इट्स फिनोमिनल, रीडिफाइनिंग दी बॉलीवुड म्यूजिक, लॉन्चिंग कुमार सानू इनटू सुपरस्टारडम. है ना, कुमार सानू के साथ अनुराधा पौडवाल की जो जोड़ी बनी है उस गाने में एक नर्म व नाजुक गुजारिश है महबूब से. वो जिंदगी में धीरे धीरे प्यार से हमेशा के लिए आने की एक दावत है. 90s की ये पहचान बन गया है. महेश भट्ट की ये फिल्म थी और काफ़ी बेहतरीन चली. और ये गाना धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में आना हमेशा याद दिलाता है कि मोहब्बत धीरे धीरे ज़िंदगी में घुल मिल जाती है और हमेशा हमें याद

अनदर ब्रिलियंट सॉन्ग, और ये बहुत ही शानदार सा गाना है। सचेत परंपरा, और इरशाद कामिल ने इसे बोल में डुबो कर लिखा, और सचेत टंडन ने इसे गाया। बेख्याली बिकेम द एंथम ऑफ द हार्ट ब्रेक इन 2019। कोविड से पहले का ये गाना है। अर्जुन रेड्डी की कॉपी करदा ये फिल्म थी, जिसे कबीर खान का नाम दिया गया, और आपके बहुत ही शानदार सी फिल्म मानी जाती है हिंदी में भी। द सॉन्ग कैप्चर्स द रॉ पेन ऑफ सेपरेशन, ऑब्सेशन एंड इनएबिलिटी टू थिंक ऑफ एनीथिंग बट द बिलव्ड। इट्स सोरिंग वोकल्स, इंटेंस गिटार एंड हॉन्टिंग ऑर्केस्ट्रा। कबीर सिंह के टर्बुलेंट इमोशन इस फिल्म में काबिले बयान हैं। द ट्रैक स्ट्रक अ कॉर्ड विद ऑडियंसेस, बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीम्ड हिंदी सॉन्ग्स ऑफ द ईयर एंड अ मॉडर्न क्लासिक ऑफ हार्ट ब्रेक बैलेट्स। है ना, बेख्याली एक जज्बाती नगमा है जो सचेत परंपरा ने कंपोज किया, इरशाद कामिल ने लिखा और सचेत टंडन ने उसे गाया। कबीर सिंह शाहिद कपूर की शानदार फिल्मों में से है, जिसमें कियारा आडवाणी ने भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी, और काफ़ी उनको अप्रिसिएशन भी मिला था। लेकिन इट्स ऑल टुगेदर शाहिद कपूर की फिल्म कह सकते हैं। तो ये था बेख्याली, एक नगमा जो दिखाता है कि मोहब्बत कभी सुकून नहीं बल्कि दर्द और जुनून भी देती है। सचेत टंडन की आवाज़ और सचेत परंपरा की धुन ने गीत को हमेशा के लिए यादगार बनाया है। तो फिलहाल मेरा ख्याल है, बल्कि ख्याल नहीं बल्कि ये एक हकीकत है, कि 12:40 हमारे पास हो रहे हैं, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके लिए पीलू वाला सॉन्ग हम प्ले करेंगे, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से। स्टे ट्यून्ड, स्टे टुगेदर। आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा एक खास कार्यक्रम, जो कि है नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ रेडियो मैन।

Indeed, a very, very beautiful song composed and sung by Arijit Singh, lyrics by Mithun, Tum Hi Ho. Aashiqui 1 ka humne gana play kiya tha, phir humne socha ki uski jodi ko mukammal karte hain. Isi wajah se humne pesh kiya ye Aashiqui 2 se Tum Hi Ho gana. Very redefining romantic anthem of the 2010, and the song expresses complete devotion. The idea is life itself is incomplete without the beloved. Arijit Singh ki ruhani awaz, Mithun ke haunting melody aur instant classic ye gana ban gaya. It topped charts across India, won multiple awards, established Arijit Singh as the voice of generation. And itni shiddat hai is gaane mein ki romance ko kabhi kabhi anthem bana deta hai. आशिकी 2 2013 में ये फिल्म आई थी, मोहित सूरी ने जिसे डायरेक्ट किया था. एक नकमा जो 2010 के रोमांस की पहचान बन गया, तुम ही हो. जी हाँ, तुम ही हो, वो गाना तुम ही हो. अ सॉन्ग दैट डिफाइन द डिकेट. सो रेनबो एफएम, वेयर लव फाइंड्स इट्स मेलोडी, हम ये कह सकते हैं. आइए, हमारे पास तकरीबन 8 मिनट और है 1 बजने के लिए, तो हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद आपके लिए रहेगा एक और ही खूबसूरत सा गाना. स्टे ट्यून एंड स्टे अलाइव विद मी. यू हैव ट्यून टू दिस वंडरफुल स्टेशन आकाशवाणी हैदराबाद, एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

उमूमन 7 फेरे होते हैं, लेकिन 14 फेरे ये फिल्म का नाम था। है तू एक नर्म व नाजुक नगमा जो जैम 8 ने कंपोज किया और जुबिन नौटियाल ने उसे गाया। इस गाने में मोहब्बत का वो एहसास है जो जिंदगी को मुकम्मल बनाता है। महबूब की मौजूदगी से हर पल खूबसूरत लगता है और आवाज़ में इतनी मिठास है कि कॉन्टेम्प्रेरी धुन इससे एक मॉडर्न रोमांस एंथम बना देती है। सो देवांशु सिंह ने इसे डायरेक्ट किया था, विक्रांत मिसी और कृति करभंडा ये दोनों ने मिलकर इसकी मुख्य भूमिका निभाई थी। द फिल्म इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी अबाउट संजय एंड अदिति हु बिलोंग टू अ डिफरेंट कास्ट एंड प्लान अ डबल वेडिंग। 14 फेरे इसी वजह से फिल्म का नाम है।

0: मुक्त भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ऑल राइट दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है हेलो रेनबो। हेलो रेनबो, द आफ्टरनून आर बिगिंस फ्रॉम 1 to 2। वी ब्रिंग यू मेलोडीज दैट शाइन लाइक कलर्स इन द स्काई एंड दिस इज योर स्पेस टू पॉज, टू स्माइल एंड टू लेट म्यूजिक कैरी यू इन टू द हार्ट ऑफ द डे। सो वेदर यू आर एट वर्क और एट होम or on the move, stay tuned and stay together because every song is a story and every story is a rainbow. है ना कमाल की बात? तो साथ बने रहिए क्योंकि ये जो 1 घंटे का सफर है आपका और हमारा, वो रंगों और सुरों से भरा होगा। तो शुरुआत करते हैं लेटेस्ट कंटेम्पररी नंबर से, ओ रोमियो, विशाल भारद्वाज की जो फिल्म है उन्होंने इसमें मौसिकी भी दी है, गुलजार ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, शाहिद कपूर की नई फिल्म, तो तृप्ति दिमरी है, तो मिलकर सुनते हैं ये एक नगमा।

वाह, अमेजिंग वॉइस, क्या कहना, इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि बयान नहीं कर सकते। अरिजीत सिंह की ओपनिंग लाइंस ने तेरे ही लिए तो, ओ रोमियो, रोमियो जूलियट, ये नाम सुनने में बड़े अजीबोगरीब लगते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं या किरदार की जो आपकी असलियत है, उसकी जो नवियत है, उस पर आप रोशनी डालते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि वाह क्या बात थी इसमें, कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ तो ज़रूर ब ज़रूर रही होगी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, काफ़ी मकबूल तरीन गाना है। फिल्म कुछ खास कर नहीं पाई, लेकिन अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। एक जो चीज़ हमेशा आपको महसूस होगी कि गुलजार और विशाल भारद्वाज की जब जोड़ी बनती है, वो कहीं ना कहीं से आर्ट और कल्चर को साथ में बांध देते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस सॉन्ग हैज़ लॉट ऑफ गुड फीलिंग, गुड वाली कैफियत आपको देखने को मिलती है। रोमांटिक ट्रैक ओ रोमियो इज़ अ हार्टफुल डिक्लरेशन ऑफ द लव एंड डेस्टिनी संग विद डीप इमोशन। जैसे कि मैं बता रहा था कि अरिजीत सिंह की आवाज़ में वो जादू है कि वो एक आइडियो को दूर तक लेकर जा सकते हैं। द टू सोल्स आर मेंट फॉर ईच अदर, वी वर ऑलवेज योअर्स, द मेलोडी इज टेंडर। हम तो तेरे लिए थे, एक जज्बाती नगमा है जो मोहब्बत की तकदीर को बयान करता है। इस गाने में ये एहसास है कि एक दो रूहों को

0: वो एक दूसरे से बनाया गया है, उनके लिए ही वो मौजूद है। हम तेरे लिए ही थे, नर्म धुन, शायरी की मिठास और आवाज़ों की गहराई, इससे एक यादगार रोमांस पैदा होता है। ओ रोमियो इज़ अ म्यूजिकल रोमांस दैट कैरीड द फ्लेवर ऑफ 90s बॉलीवुड लव स्टोरी सॉन्ग्स लाइक हम तो तेरे ही लिए थे, एडेड इमोशनल डेप्थ टू द नैरेटिव, रेजोनेटिंग विद द ऑडियंसेस हु चेरिश्ड हार्ट फेल्ट लिरिक्स एंड मेलोडियस ट्यून। है ना, प्यार का हमेशा लिखा हुआ ये नगमा याद दिलाता है कि आप मेरे लिए ही बने हो। ओ रोमियो से ये गाना आपने सुना। तो आइए आगे बढ़ेंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और गाने आपके लिए।
1: మీ సొంత ఇంటి కల సాకారానికి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారి అద్భుత అవకాశం.
2: అతి తక్కువ వడ్డీ రేటు 7.15% గృహ రుణాలను అందిస్తోంది.
1: అంతేకాక మీ యొక్క అత్యవసరాలకై బంగారంపై తక్షణ రుణ సదుపాయం, అతి తక్కువ వడ్డీ రేటుతో పాటు గ్రాముకి అత్యధిక రుణం అందిస్తుంది.
2: మీ సమీపంలోని యూనియన్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ని నేడే సంప్రదించండి.
0: दोस्तों आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं, आपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा ये ख़ास शो, और आइए आगे बढ़ते हैं और हम सुनते हैं एक नया नगमा। और ये जो है फिल्म ने काफ़ी कमाल किया है, थिएटर्स में होने दीजिए या फिर आपके ओ टी टी पर भी काफ़ी मकबूलियत मिली है। तो फिर से धुरंधर द रिवेंज, रणवीर सिंह, शाश्वत सचदेव, अरिजीत सिंह, इरशाद कामिल और आदित्य धर, ये सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन से ये फिल्म बनी है। काफ़ी महंगी फिल्म बताई जाती है। तो सुनते हैं ये गाना।

0: ओह सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक, पता ही नहीं चला। धुरंधर फिल्म इतनी यू नो वायलेंट है, यानी कि उसके अंदर इतना कुछ एक्शन है देखने को, लेकिन ये जो नगमा है बहुत ही शानदार है और उसके काफ़ी रीजंस आप देख सकते हैं, क्योंकि फिर से इज अ पावरफुल ट्रैक दैट एम्बॉडीज रिजिलियंस एंड रीबर्थ। और उसमें इंटेंस कंपोजिशन है, स्टीरिंग वोकल्स है, समटाइम्स यू नो राइजिंग अगेन आफ्टर द पेन एंड बिट्रेयल। इट्स द अरेंजमेंट ऑफ ब्लेंड्स, मॉडर्न रॉक एलिमेंट्स, सिनेमैटिक ऑर्केस्ट्रेशन, क्रिएटिंग ए साउंडस्केप दैट फील्स बोथ रॉ एंड ट्रायम्फेंट। द लिरिक्स आर क्वाइट गुड, बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। फिर से एक जज्बाती और ताकतवर नगमा है जो दिखाता है कि जिंदगी के दर्द और धोखे के बाद भी इंसान फिर से उठ सकता है। इस गाने की कंपोजिशन में रॉक के सुर और सिनेमैटिक ऑर्केस्ट्रा को जोड़ा गया है, उनको एक शिद्दत के साथ हौसला अफजाई की गई है, और लिरिक्स में जुनून है, इरादे हैं, एक कहानी है और एक गहराई भी है। धुरंधर द रिवेंज इज अ स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस, बिट्रेयल एंड रिडेम्पशन। गाने जैसे फिर से दे सर्व एज द इमोशनल एंकर्स रिफ्लेक्टिंग द प्रोटागोनिस्ट जर्नी फ्रॉम डिस्पेयर टू स्ट्रेंथ, अलॉन्ग साइड ट्रैक्स लाइक जहाँ से गुजरते हैं, द साउंड ट्रैक बिल्ड्स द फिल्म इंटेंस एटमोसफियर। है ना कमाल की बात। तो राइज अगेन स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर इसका एंथम है, और रेनबो FM वेयर म्यूजिक इंस्पायर्स करेज। आइए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన ఏప్రిల్ 26 నుంచి జూన్ 9 వరకు, మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే

अ वेरी ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक यू जस्ट लिसन टू, बहुत ही शानदार सा गाना है ये, तुम ही हमारी ओ माई लव, कुमार और अनुराधा के बोल हैं और काफ़ी दिलचस्प गाना लगता है. द ट्रैक ब्लेंड्स द कॉन्टेम्प्रेरी रोमांस विद द हार्ट फिल्ट लिरिक्स एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ टू सोल्स इंटरवाइंड. यू आर माइन एंड आई एम यूअर्स, है ना, तुम ही हमारी, तू या मैम. एक नरम और जज्बाती नगमा है जो दिखाता है कि एक दो दिल एक दूसरे के लिए बने हैं. लिरिक्स में है मोहब्बत का इजहार, तू या मैं हम एक हैं. धुन की मिठास है, आवाज़ों की गहराई है, यादगार रोमांस है, सब कुछ शानदार चल रहा है. काफ़ी शानदार सा नगमा आपने सुना और मुझे उम्मीद है कि आपको ये नगमा पसंद आया होगा. तो हम चाहेंगे कि कायदे से भी आपको दूसरे गाने सुनाए जाएं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये कायदे वाला गाना आपके लिए.

ये पेशकश थी है और कंटेम्प्रेरी रोमांटिक बैलेड है। तनिष्क बागची ने इसे कंपोज किया है, एडिशनल म्यूजिक फरहम की है फहीम अब्दुल्ला ने और अरसलान निज़ामी ने, और लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, वोकल्स बाय फहीम अब्दुल्ला ने काफ़ी शानदार तरीके से इसे गाया। इट्स पोजिशन एज अ सॉन्ग फॉर दोज इन लव एंड दोज सर्चिंग फॉर इट, ब्लेंडिंग द मॉडर्न ऑर्केस्ट्रेशन विथ पोएटिक इमेजरी। दरअसल सियारा एक नर्म और जज्बाती नगमा है जिसे बागची ने कंपोज़ किया, इरशाद कामिल ने अपने अल्फाज से उसे एक लिबास पहनाया और फहीम अब्दुल्ला ने इसे खूबसूरत तरीके से गाया। इस गाने में मोहब्बत का वो एहसास है जो अपनापन और तकदीर को बयान करता है। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, धुन में मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा नज़र आता है, एकॉस्टिक सुरों का जादू है जो इसे एक कॉन्टेम्प्रेरी रोमांस एंथम बना देते हैं, है ना कमाल की बात। तो ये था नगमा सैयारे से और अ सॉन्ग फॉर दोज इन लव एंड एट रेनबो एफएम वेयर न्यू एज लव सॉन्ग्स ऑलवेज शाइन। तो आपका क्या कहना है हमें ज़रूर बताइए, हम आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे दूसरे गाने और आपकी हमें बेहद ज़रूरत है। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं, अपने मैसेजेस रवाना कीजिए, भेजिए और हम उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हमारे इस एडिशन में हम प्ले कर रहे हैं कॉन्टेम्प्रेरी नगमे, यानी कि नए नगमे जो बार बार ज़्यादा सुने जा रहे हैं। फ़िलहाल ऐसे नगमे जो आपके स्पॉटिफाई होने दीजिए या फिर दूसरे आपके चैनल्स पर भी यही बच रहे हैं। तो हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपके लिए रहेगा आपका एक और नई फिल्म से नगमा। सो स्टे ट्यून एंड स्टे टुगेदर। आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा एक खास कार्यक्रम हेलो रेनबो, मैं हूँ आपका रेडियो मैन।

0: इंसान तो बता दो ना बोलने का।
1: सिर्फ ना काफी नहीं है क्या?
2: All right, so another very interesting song, Asma Asma, और Asma में फिलहाल सूरज मंडरा रहा है दो दीवाने शहर में। ये भी एक गाना था जिसकी I think बोल को लेकर ये फिल्म का टाइटल बनाया गया है, लेकिन इस फिल्म में जो गाना है Asma Asma, it's a perfect गाना है और काफ़ी शानदार तरीके से उसे गाया गया है, नए धुन में डालकर उसे मिलाया गया है। एंड दिस ऑल्सो रिमाइंड्स कि रोमांस में इतनी इंटेंसिटी होती है कि वो आपकी डेस्टिनी को भी बदल सकता है। सो दीज आर द ट्रैक्स दैट हैव अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी एंड नो डाउट देयर जादू इज़ जस्ट ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, है ना, एक खास नंबर। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम और सुनते हैं हमारा दूसरा गाना, और हम चाह रहे थे कि ये गाना आपके लिए प्ले करें। एक फिल्म आई थी जिसमें शुरू से ही ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा ही जोर लगने वाला है। दिस इज़ द प्लेस वेयर इट इज़ ऑलमोस्ट नीडेड द मोस्ट, आप कह सकते हैं। तो ये फिल्म का नगमा है, 21 फिल्म है, सितारे इज़ द सॉन्ग एंड सितारे इज़ एक्टेड वेल बाय अगस्त्या नंदा, सिमर भाटिया और धर्मेंद्र देवल की ये आखिरी फिल्म थी। जयदीप अहलावत ने भी काम किया है, अरिजीत सिंह और अमिताभ भट्टाचार्य की जोड़ी है। तो आइए मिलकर सुनते हैं 21 फिल्म से ये एक खूबसूरत सा गाना।
3: सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: FM Rainbow 101.9

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफएम रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

जी हाँ, इंसान एक सामाजिक हैवान है। अगर वो अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात तन्हा पूरी नहीं कर सकता, ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरों के तआवुन और इश्तराक की ज़रूरत होती है। इसी मिलजुल कर काम करने की सलाहियत को टीम वर्क कहा जाता है। जब कई अफराद एक ही मकसद को हासिल करने के लिए अपनी सलाहियतों को एकजा कर देते हैं, तो बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। टीम वर्क की अहमियत की अगर हम बात करें, तो कभी भी किसी भी इदारे, तंजीम या खेल के मैदान में टीम वर्क की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। जब एक टीम काम करती है, तो काम का बोझ तकसीम हो जाता है। हर फर्द अपनी महारत के मुताबिक जिम्मेदारी संभालता है, जिससे काम जल्द मुकम्मल हो जाता है। नए ख्यालात सामने आते हैं और बेहतर हल निकलते हैं। सीखने का मौका मिलता है। टीम के अरकान एक दूसरे के तजुर्बात से सीखते हैं। टीम वर्क की अमली मिसालों की अगर बात करें, तो खेल का मैदान, चींटियों और शहद की मक्खियाँ और खुद हमारा इंसानी जिस्म है। खेल की दुनिया टीम वर्क की बेहतरीन मिसाल है। अगर एक टीम में दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हो, लेकिन फील्डिंग और बॉलिंग खराब हो, तो वो टीम मैच नहीं जीत सकती। जीत तभी मुमकिन होती है जब 11 खिलाड़ी अपने कप्तान की क़यादत में एक इकाई बनकर खेलते हैं। हमें टीम वर्क का बेहतरीन सबक छोटे छोटे जानवरों से मिलता है। शहद की मक्खियाँ मिलकर छत्ता बनाती है और हर मक्खी का अपना मखसूस काम होता है। इसी तरह चींटियाँ अपने से कई गुना वजनी खुराक मिलकर उठाती है, जो कि इत्तेहाद की अलामत है। हमारा जिस्म भी एक अजीम टीम की मानिंद है। दिल, दिमाग, हाथ और पांव सब अलग-अलग काम करते हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है, इंसान को जिंदा रखना। अगर एक अजू भी काम छोड़ दे, तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। टीम वर्क में पैदा होने वाले मसाइल या किसी गलत बात या फिर इख्तिलाफात का मुकाबला हमको दलील और हकायक के साथ करना चाहिए। टीम में अगर कोई ऐसी तजवीज़ दें जो आपको गलत लगे, तो गुस्सा करने के बजाय हकायक पेश करें। जैसे कह दें कि आपका ख्याल अच्छा है, लेकिन पिछली बार के नतायज के मुताबिक अगर हम इसे इस तरह करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं के बजाय हम का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी की बात को काटने के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप गलत कह रहे हैं कहने के बजाय हमें इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए। पहले सुने, फिर जवाब दे। किसी का अगर मुकाबला करना हो, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि पहले सामने वाले की पूरी बात सुने, ताकि उसे लगे कि इसकी अहमियत है। जब वो बात मुकम्मल कर ले, तो उसकी बात के मुस्बत पहलू की तारीफ करें, फिर अपनी राय पेश करें। मुख्तसर ये कि दुनिया की तमाम बड़ी कामयाबियाँ, चाहे वो चांद पर पहुँचना हो या कोई अजीम शान इमारत बनाना, सब टीम वर्क का ही नतीजा है। अगर हम भी तरक्की करना चाहते हैं, तो हमें मैं के बजाय हम की सोच अपनानी होगी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे साइंस एक इंसानी काविश पर तकरीर, तहरीर और पेशकश थी नसीम सहर की। यकीनन साइंस हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लाती है और इससे न सिर्फ लोगों की ज़िंदगी में एक नया सुधार और मियारे ज़िंदगी में एक नई उड़ान देखी जाती है।

0: अब आइए सुनते हैं एक और टॉक, उनवान है अच्छी सेहत। तहरीर और पेशकश है एम ए हाई की, माविन है साजिदा बेगम।
1: हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि 24 घंटों के दौरान नींद, जिस्मानी सरगर्मी और बैठे रहने के अवकात की तकसीम तवील उलमुद्दती सेहत पर गहरे असरात मुरतिब करती है, और सेहतमंद बुढ़ापे के लिए मुनासिब नींद और जिस्मानी सरगर्मी दोनों का होना नागुज़ीर है। एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक सिर्फ 9.12% अफराद ही बैक वक्त रोज़ाना तजवीज़ करदा 8,000 कदम चलने और 7 से 9 घंटे की नींद पूरी कर पाते हैं। तहकीक में ये भी बात सामने आई है कि नाकाफी नींद के मनफी असरात अगले दिन की जिस्मानी सरगर्मियों पर मुरतब होते हैं, जिससे जाहिर होता है कि मुनासिब नींद हासिल करना जिस्मानी सरगर्मी की सतह बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। जोश फिटन का कहना है कि इनके डेटा के मुताबिक सिर्फ एक छोटा सा तबका ही मामूल के मुताबिक मुनासिब नींद और मतलूबा जिस्मानी सरगर्मी हासिल कर पाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तनाजुर में नींद और जिस्मानी सरगर्मी से मुतालिक अवामी सेहत की हिदायात की अमली मुताबिकत पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ मुतालियात से ये बात साबित हो चुकी है कि मुनासिब नींद और जिस्मानी सरगर्मी दोनों ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए नहायत अहम है। नाकाफी नींद और जिस्मानी सरगर्मी की कमी को अलग अलग तौर पर डिप्रेशन, मोटापे, ज़ियाबतीस, दिल के अमराज, सोजिश और मजमूई तौर पर अमवात के ख़तरे में इजाफे से जोड़ा गया है। इस तहकीक में 3 साल और 5 माह के दौरान 244 मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले 70,963 अफराद के डेटा के तज़िये के ये तमाम अफराद दस्तियाब करदा हेल्थ ट्रैकिंग आलात इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें गद्दे के नीचे नस्ब नींद की पैमाइश करने वाला सेंसर और फिटनेस ट्रैकर शामिल थे। नींद की पैमाइश करने वाले सेंसर से हासिल होने वाले डेटा की बुनियाद पर मुहक्किकीन ने नींद के दौरानिये, नींद आने के वक्त और नींद की इफादियत का हिसाब लगाया, यानि बिस्तर पर मौजूद वक्त में से कितना वक्त वाकई नींद में गुजरा। नतायज के मुताबिक सिर्फ 9.12% शर्का ऐसे थे जो 7 से 9 घंटे की नींद के साथ रोज़ाना कम से कम 8,000 कदम भी मुकम्मल कर पाए। इसके बरक्स 5.16% अफराद ऐसे थे जिनकी औसत नींद 7 घंटों से कम और रोज़ाना कदमों की तादाद 5,000 रही, जो बैठे रहने वाले तर्ज ज़िंदगी की बालाई हद समझी जाती है। मज़ीद ये कि तकरीबन 64% अफराद 7 से 9 घंटे की नींद और कम से कम 5,000 रोज़ाना कदमों का इम्तिजाज भी हासिल ना कर सके। सन 2022 ईस्वी में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मालजीन का कहना है कि मरीज़ों से ये पूछना कि वो कितने घंटे सोते हैं इतना ही ज़रूरी है जितना कि इनका ब्लड प्रेशर, खुराक और सेहत से मुतालिक दीगर सवालात करना। ताहम कई अफराद को नींद आने में मुश्किलात पेश आती। कई लोग रात भर काम करते हैं और दिन को सोते हैं। कई गैर मुल्की खबरसां इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूरोसाइंसदान का मानना है कि हमारी नींद का वक्त भी इतना ही अहम है जितना नींद का दौरानिया। जब हमारी सोने की रूटीन बायोलॉजिकल साइकिल से मुमासलत नहीं रखती तो इब्तदाई तौर पर हमें ज़्यादा भूख का एहसास होता है, खून में शुगर और ब्लड प्रेशर में इजाफा होने लगता है। मुख्तसर मुद्दत के लिए यह जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर ये रूटीन कई महीनों और सालों तक जारी रहे तो दिमागी बीमारी, ज़ियाबतीस, अमराज़ क़ल्ब जैसे बीमारी समेत और इसके अलावा वज़न में इजाफा हो सकता है। जिल्द इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा आज़ू है, मगर क्या आपको मालूम है कि ये अमराज की पेशगोई भी करती है? जी हाँ, कुछ अमराज का सबसे पहले इशारा जिल्द पर ज़ाहिर होता है, मगर क्या आप इन अलामात से वाकिफ़ हैं जो जिल्द मुख्तलिफ अमराज के लिए ज़ाहिर करती हैं? पर्स

0: से भी छोटे ज़र्रात को नैनो प्लास्टिक्स कहते हैं, जिनका हजम एक नैनोमीटर से एक माइक्रोन के दरमियान होता है। ये इतने बारीक होते हैं कि आसानी से हमारे खलियात की हिफाजती झिल्ली को पार करके अंदर दाखिल होकर हमारे जिस्म के निज़ाम को बिगाड़ सकते हैं। जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक ये ज़र्रात ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सोजिश और जीनियाती सतह पर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फी ज़माना प्लास्टिक की अशिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, चाहे वो खाने पीने के बर्तन हो, पैकिंग का सामान हो, बोतलें, प्लास्टिक के बैग, हत्ता के बावर्ची खाने के चम्मच जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, इन सब में वक्त के साथ ये ज़र्रात पनपने लगते हैं। ख़ास तौर पर जब प्लास्टिक की चीज़ें किसी भी वजह से गर्म हो जाएं या रगड़ लगे तो ये माइक्रो प्लास्टिक खाने और पानी में शामिल हो जाते हैं। ये ज़र्रात इतने हल्के और बारीक होते हैं कि हवा में तैरते रहते हैं और हम इन्हें सांस के ज़रिए अंदर दाखिल कर लेते हैं। सन 2022 ईस्वी में की जाने वाली एक और तहकीक में 80% अफराद के खून के नमूनों में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए, जबकि साइंसदानों का यह भी कहना है कि ये ज़र्रात किसी फ़र्द के दिमाग में भी दाखिल हो सकते हैं। दिमाग की कुदरती हिफाजती दीवार, जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है, आम हालात में नुकसानदा ज़र्रात को दिमाग तक पहुँचने से रोकती हैं। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक इतने बारीक और मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं कि ये इस रुकावट को उबूर करने में कामयाब हो जाते हैं। नेचर मेडिसिन में शाये की जाने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि इंसानी दिमाग में माइक्रोप्लास्टिक की मकदार पिछले 20 बरसों में तकरीबन 50% बढ़ गई है, जबकि अल्जाइमर के मरीज़ों में ये ज़र्रात 10 गुना ज़्यादा पाए गए हैं। लिहाजा ये ज़र्रात दिमागी अमराज लाहक होने के इम्कानात में इजाफे का सबब बन सकते हैं या इनकी शुरुआत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दिमाग के अलावा ये ज़र्रात जिगर, गुर्दे और दिल की शरियानों में भी पाए गए हैं। इटली में की जाने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जिन अफराद के खून की शरियानों में माइक्रो प्लास्टिक्स मौजूद थे, इनमें दिल का दौरा, फालिज या अचानक मौत का खतरा 4 से 5 गुना बढ़ गया था। यह ज़र्रात शरियानों में सोजिश और प्लेक बनाने का अमल तेज़ करते हैं, जिससे खून की रवानी मुतासिर होती है और संगीन अमराज पैदा हो सकते हैं। ये असरात सिर्फ जिस्मानी आज़ा तक महदूद नहीं रहते, बल्कि हमारे हारमोन्स पर भी असरानंदाज होते हैं। प्लास्टिक में मौजूद बास केमिकल्स जैसे बायोसफेनॉल ए और पैथलेट्स हार्मोनल निज़ाम को बिगाड़ देते हैं। ये मुरक्कबात तौलीदी सेहत भी मुतासिर करते हैं, थायराइड के अफाल में खलल डालते हैं और हामिला ख्वातीन में बच्चों की नशोनुमा पर भी असरानंदाज हो सकते हैं। इस तरह ये ज़र्रात न सिर्फ मौजूदा बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी ख़तरा बन जाते हैं।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बेदारी कायनात सिलसिले तहत अच्छी सेहत पर एक टॉक। तहरीर और पेशकश थी एमए हाई की। अब आइए सुनते हैं दोस्तों गीत सुरीले का, था में कुछ सुरीले गीत।

या जामियात में पढ़ने वाले नौजवानों की बात की जाए तो इनका वक्त हम अक्सर और बेशतर अगर देखें तो ये अपनी छुट्टियां कहीं अच्छी जगह या अच्छे मकाम पर ज़रूर गुजारते हैं, चाहे वो अपनी रिश्तेदारों की देहात हो या खूबसूरत वादियाँ हों जहाँ ना सिर्फ मौसम दिलकश होता है बल्कि एकदम खुशनुमा भी होता है। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म सौदागर से। इस फिल्म के गीत को गाया है मनहर उदास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह ने। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत से इसे सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

दोस्तों, मौसम गर्मा चल रहा है और लोग ज़्यादातर अपना वक्त घर या दफ्तर में गुजार रहे हैं, और आजकल वर्क फ्रॉम होम को भी काफ़ी फ़र्वग दिया जा रहा है, जिससे न सिर्फ वक्त और ईंधन की बचत होती है बल्कि इससे काम में आसानी भी होती है। वैसे तलबा की अगर बात की जाए

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सौदागर से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों, हम बात कर रहे थे छुट्टियों में अच्छे मकाम की सैर की तरफ। वैसे इंसान और कुदरत का जब मुशाहिदा करता है तो उसमें ये खो जाता है, इसकी खूबसूरत वादियाँ, बहते हुए आबशार, दरिया न सिर्फ से दुनिया की फिक्रों से, अफकार से न सिर्फ दूर करते हैं, बल्कि ये एक खुशनुमा और एक हल्का सा एहसास भी दिलाते हैं और एक सुकून और एक उम्मीद की किरण भी जगाते हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसको लिया है हमने फिल्म हिना से। इस फिल्म के गीत को गाया था लता मंगेशकर जी ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हिना से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों, हॉलीडेज हर कोई मनाता है, चाहे स्टूडेंट हो या तलबा या अफराद। छुट्टियां मनाने हम अक्सर और बेशतर अच्छे मकामात का इंतखाब करते हैं और चाहते हैं कि ये मकाम हमारी ज़िंदगी के यादगार लम्हात में शामिल हो। और यहाँ पर गुजारे हुए पल ना सिर्फ हमें ज़िंदगी भर एक खुशी का एहसास दिलाते रहे, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। इसके लिए लोग अच्छे मकामात की सैर करते हैं, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी काफ़ी खूबसूरत और दिलकश मकामात हैं, जहाँ लोग ना सिर्फ अपना वक्त गुजारते हैं, बल्कि छुट्टियाँ भी गुजारते हैं। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म अकेले हम अकेले तुम से। इस फिल्म के गीत को गाया है

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अकेले हम अकेले तुम से लिया क्या ये गीत। वैसे दोस्तों, अक्सर बेशतर सफ़र के दौरान जब हमारे साथी हमसे कुछ हंसी या बातचीत करते हैं तो हमें एक मजाक सा सुझाई देता है कि हम उनके साथ कुछ खुशी के पल गुजारें, कुछ लतीफ़ा गोई करें और कुछ अच्छी बातें करें और कुछ ऐसी बात करें जिससे एक खुशी का माहौल पैदा हो और एक फरहत बख्श लम्हा महसूस कर सके। आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसको लिया है हमने फिल्म चांदनी से। इस फिल्म के गीत को गाया था श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी ने। आइए सुने।
1: चांद

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चांदनी से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सफ़र और उस दौरान होने वाली खट्टी मीठी बातें और मस्ती भरे माहौल की। वैसे जब हम किसी वादी से गुजरते हैं और ठंडी हवा के झोंके से हम लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये पल हमारे साथ बरकरार रहे और हम इससे खूब मज़े लें। और इसी के साथ हम चाहते हैं कि ये वक्त थम जाए। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसको लिया है हमने फिल्म कहो ना प्यार है से। इस फिल्म के गीत को गाया है लकी अली ने। आइए सुने।

फिल्म रंगीला से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों, सफ़र में हम सफ़र हो तो राह आसान हो जाती है और राह की सख्तियाँ भी दूर हो जाती है। इसीलिए हम सफ़र का होना ज़िंदगी में भी ज़रूरी है, और सफ़र के दौरान तो और भी ज़रूरी है, जहाँ सफ़र ना सिर्फ दिलकश और यादगार बनता है। अब आइए दोस्तों, गीत सुरीले गाते जा में सुनते हैं आखिरी गीत जिसको लिया है हमने फिल्म डुप्लीकेट से। इस फिल्म के गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक जी ने।

0: भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकशी का मज़ा हमसे पूछिए। हर इंसान जिंदगी में किसी न किसी तकलीफ़ से गुज़रता है, लेकिन उस दर्द को खुद पर हावी करने के बजाय इसे संभालना और आगे बढ़ना ही कामयाबी है। माजी की यादें अगर तकलीफ दें तो उनमें खो जाने के बजाय हाल और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अंधेरा जितना भी गहरा हो, रोशनी की एक किरण ज़रूर होती है। मायूसी के बजाय उम्मीद और यकीन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने दुख और जज्बात किसी काबिल एतमाद शख्स से शेयर करना दिल को हल्का करता है और इंसान को नई ताकत देता है। जिंदगी के दुख आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते हैं, मगर हमें खुद को संभाल कर उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: पैगाम शब के साथ दोस्तों आज का नारंग प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। इस उम्मीद के साथ कल शब 9:30 पर हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई बज में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM रेनबो 101.9 MHz पर। कुछ देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हम
2: आपके साथ। मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज

0: नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज. इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल.
2: परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी.

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। और वक्त हो गया है 11:11, आपने ट्यून इन किया हुआ है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz। सही है, तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं आनंद बख्शी के लिखे गीत के साथ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, किशोर कुमार की आवाज में होगा ये गीत, फिल्म का नाम है कर्ज। और इसके बाद आप सुनेंगे इंदीवर का लिखा गीत, राजेश रोशन का संगीत, नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज में गीत होगा, फिल्म का नाम है खून भरी मांग। तो इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 MHz गीत मेरे मनमीत में। आज आपके साथ है अर्पना। 11:11 और 40 सेकंड हो चुके हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ग्यारह बजकर 27 मिनट और 6 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत। अगले दो गीत जो है उनके बारे में आपको कुछ बता दूं। आनंद बख्शी का लिखा हुआ एक और गीत होगा, संगीत लक्ष्मी

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज है अनुराधा पौडवाल और मनर उदास की, और फिल्म का नाम है हीरो। और इसके बाद आप सुनेंगे अगला गीत, एक बार फिर से राजेश रोशन का संगीत होगा, इंदीवर के लिखे हुए बोल होंगे, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की होगी। फिल्म का नाम है कामचोर। इन दो फिल्मों से आप गीत सुनेंगे, गीत मेरे मनमीत में।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ एफएम गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:45 और 35 सेकंड हो चुके हैं। आज गीत मेरे मनमीत में आपके संग है अर्पना। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो है विशाल भारद्वाज का संगीत है, गुलजार के लिखे बोल है, लता जी की आवाज में होगा माचिस फिल्म से गीत, और इसके बाद होगा 1982 में आई फिल्म डायल 100 से गीत। कुमार इसके आवाज जो है वो है किशोर कुमार की है, महेंद्र कपूर ने इनका साथ दिया है, और इसके अलावा संगीत की बात करें तो संगीत है बप्पी लहरी का। तो आप इस गीत का आनंद लीजिए, दोनों गीतों का बल्कि मैं कहूंगी कि आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

जी हाँ दोस्तों, रात को नींद कैसे आ सकती है जब गीतों का ऐसा सिलसिला चल रहा हो आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर। अगला गीत आप सुनेंगे उत्सव फिल्म से, लता जी और आशा जी की आवाज में होगा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये संगीत है। और इस खूबसूरत गीत के साथ ही अर्पणा को दे इजाजत। उत्सव फिल्म के इस गीत के बाद आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अपना चाहेगी इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात

मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया। एनआईए के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुसूचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 92 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज की रात आपके साथ मैं हूँ माधुरी। कार्यक्रम है निशिगंधा, जहाँ जिंदगी की हर धड़कन सुनाई देती है। आज हम बात करेंगे जिंदगी की उस हकीकत की, जिससे रोज अंदर ही अंदर हम लड़ते हैं। बज़ाहिर हम दिखते खुश हैं, शायद हो भी, पर हम आज बात कर रहे हैं उस कश्मकश की जो हमें अपनों से दूर कर रही है, हमें अपने अपने अजनबी बना रही है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? अगर हैं तो जुड़ जाइए ना हमारे साथ, देखते हैं क्या हल निकलता है इस कश्मकश से निकलने का।

आर डी बर्मन का संगीत था, किशोर कुमार की आवाज़ और फिल्म आपकी कसम का ये गीत सुना आप सभी ने। और आज हमारा जो मौजू है थोड़ा सा भावनात्मक भी है और थोड़ा मुश्किल सा मौजू भी है और हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है ये, लेकिन क्या करें, हकीकत का सामना तो करना पड़ेगा ना। आज का जो समय है ना, उसमें एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, जो हमारे खून के रिश्ते हैं उसके बावजूद हमारी आपस में एक दूसरे के लिए अजनबियत जो है वो बढ़ती जा रही है। घर में ही ले लीजिए, चाचा चाची, ताया ताई, भाई बहन, सभी एक ही परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे बैठे होते हैं, फिर भी उनके बीच भावनात्मक दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये दूरी भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक है। हम अपने अपनों को खोते जा रहे हैं और उन्हें अपने अपने अजनबी बना रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि गलती किसकी है, कौन है यहाँ पे वफा।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। ये सफर है निशी गंधा का और हम आज बहुत ही अपनी खास बात कर रहे हैं, अपने अपनों के दिलों का हाल जानने की कोशिश में आज हम निकल पड़े हैं। देखिए ना, आज की जो व्यस्त जीवन शैली है, नौकरी की भागदौड़ है, शहरों का अलगाव और फिर सोशल मीडिया का प्रभाव, इससे हमारे जो रिश्ते हैं ना वो कमज़ोर हो रहे हैं। रविवार की एक छोटी सी फैमिली पार्टी ही को ले लीजिए।

किसी शादी का उत्सव में जब सब इकट्ठे होते हैं तो मेज पर चाय नाश्ता चल रहा होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन बड़े लोग अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। अगर किसी ने पूछ भी लिया, बेटा नौकरी कैसी चल रही है, तो सामने से जवाब मिलता है, ठीक है चाचा, बस बात खत्म। कोई गहराई नहीं, कोई दिल से पूछताछ नहीं। ताई ने अगर बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछ लिया तो सामने से जवाब में एक औपचारिक मुस्कान आ जाती है। सब एक दूसरे को देखते हैं लेकिन देख नहीं पाते। क्या आपसी प्यार इतना हल्का होकर रह गया है? क्या हम अपने आप में सिमटते जा रहे हैं? मेरा कमरा, मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, मेरी शर्ट, मेरा जूता। पहले हम अपनी चीजें बांट लिया करते थे, अब अपना अपना करने लगे हैं। क्या कहीं हम में बदलाव आ गया है? अगर है तो हमें फिर से बदलने की जरूरत है। प्यार की कहानी दो लफ्जों की है, तो क्यों ना उसे पढ़ा जाए, समझा जाए और अपने आसपास उसे आजमाया जाए।

आशा जी की आवाज़ में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप, और साथ में शरद कुमार की आवाज़ भी थी और अमिताभ बच्चन की भी आवाज़ आपको इस गीत में सुनने को मिली होगी। बात कर रहे हैं निशिगंधा में आज अपने अपने अजनबी हो जाने की। ये जो अजनबीपन बढ़ रहा है आपसे रिश्तों में, इसका एक तो सबसे बड़ा कारण जो नज़र आ रहा है वो है समय की कमी। लोग आज इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होता जा रहा है। चाचा शहर के एक छोर पर रहते हैं तो ताया दूसरे राज्य में। मिलना सिर्फ फेसबुक पर वो जो हैप्पी बर्थडे वाली शुभकामनाएं हैं ना, उन्हीं तक सीमित हो गया है। दूसरा, आप समझिए कि आर्थिक असमानता भी एक कारण है। एक भाई की आय अच्छी है तो दूसरे की कम। इससे आपसी रिश्तों में ईर्ष्या, तुलना और जो है दूरी भी पैदा हो रही है। कभी-कभी पुरानी बातें, संपत्ति के झगड़े या फिर शादी के लिए गए फैसलों पर भी मतभेद रिश्तों में दरार डाल देते हैं। बात सुनने में अच्छी नहीं लगती, पर ये सच है। हम आज किसी को भी समझना नहीं चाहते और बिना समझे ही सामने वाले के लिए धारणा बना लेते हैं, और सब बिगड़ जाता है जब हम उसी धारणा में जीने लगते हैं, बिना एक दूसरे को सुने, बिना किसी को समझे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये निशी गंधा का सफर है जिसे लेकर मैं माधुरी हूँ आज की रात आप सभी के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं निशी गंधा में अपने अपने अजनबी की। जी हाँ, हर घर में ऐसा एक कश्मकश जो है वो आ ही गई है कि हम अपने अपने अजनबी होते जा रहे हैं। अच्छा, इसका एक पहलू ये भी है कि आज के युवा इस अजनबीपन को और बढ़ा रहे हैं। वो अपने दोस्तों और सोशल सर्कल से ज़्यादा जुड़ गए हैं, घर वालों से ज़्यादा उन्हें अहमियत देते हैं। घर पर चाचा चाची आएँ तो बस हेलो, हाय और बाय। उनकी समस्याएँ यानी कि चाचा चाची की बातें, उनकी समस्या

उनके अनुभव सुनने के लिए आज के युवाओं में इच्छा ही नहीं रही है। पर सारा दोष जो है युवाओं पर नहीं डाला जा सकता, शायद हमने भी कहीं चूक कर दी है। रिश्तों से ज़्यादा महत्व उनके अपने समय को दिया, उनके दोस्तों को दिया। जब समझने की ज़रूरत थी तब शायद हम ही चुप रह गए, और या फिर हमने ही रिश्तों को उतनी अहमियत नहीं दी या उन्हें उस तरह से समझाया या उन्हें बताने की कोशिश नहीं की कि रिश्ते जो हैं हमारे कितने मूल्यवान हैं और इन्हें हमें बचाना है। तो कहीं ना कहीं किसी एक पे गलती थोपना गलत होगा। ये हमारी आपसी समझ का ही परिणाम है कि आज हम अलग अलग होते जा रहे हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। ये सफर है निशिगंधा का और आज निशिगंधा में हम बात कर रहे हैं अपने अपनों की, जिनसे हम कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो दूर जाने से पहले इन रिश्तों को मना लेना चाहिए, अपने पास बुला लेना चाहिए और समय निकाल कर अपने, मतलब जो अपने हमारे अपने हैं, उनके लिए सोचना चाहिए और ऐसे रास्ते निकालने चाहिए कि ये जो दूरियां हैं ये घट जाएं, कम हो जाएं।

हमारे अपने भी हमारी जिंदगी में इसी तरह से शामिल हैं, उन्हें रोक लेना है, उन्हें जाने नहीं देना है। हमारे छोटे छोटी सी कोशिशें रिश्तों को फिर से जोड़ सकती हैं। अगर परिवार में पार्टी हो तो मोबाइल बंद करके बैठ के देखिए, पुरानी यादों को ताज़ा करिए, एक दूसरे की समस्याएं सुनिए और अगर ज़रूरत पड़े तो बिना शर्त मदद के हाथ बढ़ा दीजिए। एक छोटे कदम से बड़ा बदलाव आ सकता है। बच्चों को बचपन से ही रिश्तों के महत्व को सिखाइए। रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से मजबूत होते हैं। आखिरकार जीवन की यात्रा में हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, अपने अपनों का साथ सबसे बड़ा सहारा होते हैं। अगर चाचा चाची ताया ताई अजनबी बन गए तो फिर अपना कौन बचा? समय है कि हम इस अजनबीपन को तोड़ डालें और फिर से अपने बने। अपने अपने अजनबी बनने की ये जो प्रक्रिया है ना, ये धीमी जरूर है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। इसे रोकना हमारे हाथ में है। परिवार की गर्माहट तभी बनी रह सकती है जब हम एक दूसरे को समय दें, सम्मान दें और प्यार दें। वरना भीड़ भरे घर में भी हम अकेले और अजनबी महसूस करते रहेंगे।

निशिगंधा का ये सफ़र कहता है कि आपसे यहीं इजाज़त ले ली जाए। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार, बने रहिएगा आकाशवाणी के फिल्म गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग है और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुनाया।

पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब ये सफ़र है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स। आपके साथ आज की रात मैं हूँ माधुरी।

बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग ये रहा, और ये गीत था फिल्म दो आंखें बारह हाथ से, लता जी की आवाज़ और वसंत देसाई का संगीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये प्यारा सा जोशीला सा गीत सुना आपने गीता दत्त, महेंद्र कपूर, मुकेश मन्ना डे और साथियों की आवाज में फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म श्री 420 से।

हेमंत कुमार के आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म अंजाल से। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म आजाद से, आवाजें लता और उषा मंगेशकर की।

आप सुन रहे थे गीत लता जी के आवाज में, फिल्म तीसरी कसम से, और शंकर जयकिशन का संगीत था। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म चोरी चोरी से, लता जी और मन्ना डे की आवाज है, और गीत आप सभी के लिए।

0: AIR at 90.
1: जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और ये जो सफ़र आपने तय किया, इसका नाम था गीत सुहाने। बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत हम लेकर आते हैं इसमें आपके लिए, और एक आखिरी गीत इस सफ़र का बचा हुआ है, वो भी हम आपकी नज़र कर रहे हैं। और ये गीत है फिल्म हावड़ा ब्रिज से, आशा जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और गीत आपके लिए।

गीत सुहाने का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। भारत ने कल नेपाल की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 10 बंदी परिवहन ट्रक भेंट किए। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये वाहन नेपाल की सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संचालन क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसलों को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाभाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाभाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 MHz पर, और इस वक्त हम लेकर आते हैं कार्यक्रम रात सुरमई। रात सुरमई लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। किसे आए नजर अंधेरे में, हाँ कोई है मगर अंधेरे में, एक दो पल को फिर से उभरा है एक दिया डूब कर अंधेरे में, इससे आगे जमीन हो शायद, सोच कर पांव धर अंधेरे में।

मोहब्बतें उल्फतें शिकस्ता, शिकस्ता दिल हसरतें शिकस्ता, रहे सहे ख्वाब टुकड़े टुकड़े, बची बची लज्जतें शिकस्ता, करार के लम्हे टूटे टूटे, सुकून की सांतें शिकस्ता।

धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की। धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की। लो गले पड़े कांटे क्यों गुलों की ख्वाहिश की। लो गले पड़े कांटे क्यों गुलों की ख्वाहिश की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 2:28 और हो गए हैं पूरे 30 सेकंड। बात लफ्जों के दरमियां रख जा, अक्ल वालों का इम्तहान रख जा। रूठ कर सबसे जा रहा है तो दिल में झूठी तसल्लियां रख जा।

सकता है। जज्बों का मासूम परिंदा उड़ता है हर मौसम में, रंजो खुशी में आंख न नम हो ये कैसे हो सकता है। और दिल की बात समझने वाला कोई तो होगा, शहर ये सारा शहरे अजम हो ये कैसे हो सकता है।

जगजीत सिंह की आवाज़ में वो बात है कि हर दिल की बात अपने आप ज़बां पर आ जाती है। ये बहुत अच्छी सी एक ये बात है जो आप तक पहुंचा रही हूं कि जो मेरा वो उसका गम हो, ये कैसे हो सकता है। शामो सहर का एक मौसम हो, ये कैसे हो सकता है। दिल में कुदूरत, जहन में नफरत और जुबां अंगारा हो, फिर लहजे का सुर मध्यम हो, ये कैसे हो।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये सफ़र है रात सुरमई का। समय हो गया है 2:41 और पूरे 47 सेकेंड्स।

चंदन दास की आवाज में ये गजल जरूर पसंद आई होगी आप सभी को। दरवाजा बंद रखने से भी क्या मिला मुझे, आवाज दे रहा था तेरा रास्ता मुझे। दिल पे वही है बोझ, वही सुबह शाम है, फिर भी ये साल जाने क्यों अच्छा लगा मुझे। मैं खुद ही जान बूझ के नजरें चुरा गया, वरना तेरे सुलूक ने टोका तो था मुझे। अगलों की तरह उसको भी दावा था साथ का, ये और बात आज वो तन्हा लगा मुझे।

इसी के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं समाप्त होता है और दीजिए विदा माधुरी को। आप सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी विश्वास पर आधारित होगा, जो दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में आयोजित मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन फ्रॉम पॉलिटिकल रीसेट टू कमर्शियल डिलीवरी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोताबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोताबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग हमराही कार्यक्रम में गीतों के साथ। नमस्कार।

वाक्य में ही दोस्तों, जिसने इस दिल को और दिल के जज्बातों को समझ लिया, उसने सबका प्यार पा लिया। रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं लोग किसी से बात करते हैं, कोई प्यार से बात करता है तो कोई गुस्से से, लेकिन आपकी मीठी वाणी सुनने वाले के दिल को जीत लेती है। दिल एक मंदिर फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। हसरत जयपुरी की रचना थी और संगीत शंकर जय किशन का। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ पत्थर के सनम फिल्म से, ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

हसीना मान जाएगी। इस फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अख्तर रोमानी की रचना थी और दोस्तों ये गीत था और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और अब वो गीत जो आपसे मैंने कहा था, धुन पहचान ली ना आपने, पत्थर के सनम फिल्म से ये गीत।

0: जब कोई इंसान किसी को चाहने लगता है तो देखा गया है कि उसे उसकी वैल्यू ही सब कुछ लगने लगती है, उसके बिना कुछ भी नहीं लगता।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और हमराही कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चौक।

संजोग फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से, SH बिहारी की रचना है और OP नैयर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

शुक्रिया तो कहना ही पड़ेगा जब आपकी जिंदगी में इतनी कोई अमूल्य चीज आ जाती है। और अब एक और गीत सुनने का आनंद उठाते हैं।

संगम फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की रचना थी, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हमराही कार्यक्रम अभी जारी है और गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।

सूरज फिल्म से ये गीत आपने सुना, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जय किशन का संगीत। अरे अगला गीत ये रात फिर ना आएगी फिल्म से आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है, SH बिहारी की रचना है और OP नैयर का संगीत।

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे जंगली फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत। पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, अपनापन कुछ इतना ज्यादा है आपसे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में

सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधानों के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी विश्वास पर आधारित होगा, जो दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में आयोजित मंत्री स्तरीय पूर्ण अधिवेशन फ्रॉम पॉलिटिकल रीसेट टू कमर्शियल डिलीवरी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोताभाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोताभाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है, 100.1 MHz पर आपने ट्यून किया है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। और इस कार्यक्रम में आप सभी को गीतों को सुनवाने के लिए आ गई हूँ मैं वंदना चुग। नमस्कार।

किसी की आवाज, किसी की बात आपके दिल की इतने करीब हो जाती है कि आपको लगता है ये हमारे जीने की वजह बन गई है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आपने सुना बरसात की रात फिल्म से। साहिर लुधियानवी की रचना थी और रोशन का संगीत। अगला गीत आपकी खिदमत में, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं।

बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेती हैं तुझे इस जिंदगी, हम दूर से पहचान लेती हैं।

हकीकत फिल्म से ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज़ में, कैफी आज़मी के बोल थे और मदन मोहन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे अंदाज फिल्म से किशोर कुमार का गाया हुआ, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

दोस्तों, हर दिन की शुरुआत हमारे लिए नई होती है और हम सोचते हैं कि आज हम कुछ नया करेंगे और नया करके दिखाएंगे और अच्छा ही सोचेंगे।

0: दूर का राही इस फिल्म से ये गीत था किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। इरशाद की रचना थी और किशोर कुमार का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक।

0: संघर्षों के कुछ कस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अरुणिमा, इस कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर।

घर संसार, इस फिल्म से गीता, मन्ना डे और आशा भोसले का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रवि का संगीत। अब अगला गीत, जिसमें ये कहा गया है कि आप कहीं भी चले जाएं, आपका दिल वहीं बसता है जहां आप रहते हैं। वैसे भी आप कहीं भी घूमने चले जाएं, लेकिन

दोस्तों, फिल्म का नाम तो आप जान ही गए होंगे। श्री 420 फिल्म से ये गीत था। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत आवाज वही जानी पहचानी मुकेश की थी। अगला गीत आप सुनेंगे कोहरा फिल्म से किशोर कुमार का गाया हुआ। कैफी आजमी ने गीत को लिखा।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और आप गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ। दोस्तों ये तो सच बात है ना कि जब इंसान के हौसले बुलंद होते हैं तो मंजिलें खुद ही कदम चूम लेती हैं।

जिंदगी में दुख सुख के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन सब को हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं और परवाह किए बिना ही उन जिंदगी में आए थपेड़ों को सहन कर लेते हैं। और फिर जब वक्त बीत जाता है तो हमें खुद को भी एहसास होता है कि हम तो बहुत बड़े मंजर से गुजर गए। आपको बता दें, मेरी जंग फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का गाया हुआ। आनंद बख्श के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। दोस्तों, बहुत से गीत हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देते रहे हैं और हमें देते भी रहेंगे। और बहुत बार किसी का मूड ठीक नहीं होता तो वहाँ भी हमें गीत ही याद आते हैं। और अगला गीत शोर फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों का गाया हुआ है, इंद्रजीत सिंह तुलसी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हर गीत में कोई ना कोई बात छिपी होती है और यहाँ भी ये गीत हमें कह रहा है कि हमें अपना स्वभाव ऐसे सम रखना चाहिए कि हर कहीं हम अपने आप को ढाल लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। गृहमंत्री ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली

0: स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी भरोसे पर आधारित होगा। ये दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर में 92 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता के एलिमिनेटर मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिसका कोई नहीं होता, कहते हैं ना ऊपर वाला है और वही उसकी पालना करता है। वैसे तो सभी की पालना वही करता है, वही चिंता करता है। जब कोई सहारा नहीं होता तो वही किसी ना किसी रूप में आता है, बस बुलाने की ही देर होती है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: भोर सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ। दोस्तों, हर इंसान अपने व्यवहार से ही पहचाना जाता है, इसलिए अपने कदमों के निशान आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे ही छोड़कर जाएं।